मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026 अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
1: T's and C's apply.
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
1: And you didn't pay those massive roaming charges?
0: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
2: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
3: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफार्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers it's your Laika Radio

0: Greater Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
6: T's and C's apply.
0: Like a radio. Easing you through the night with London's biggest hits.

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: कंटेनर्स
1: सेटको फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: इल्फर्ड तैयार हो जाइए वेंसडे 15th जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे क्रिस्पी राज कचोरी

0: Costco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Sadco food containers.
0: The perfect food storage solution, Sadco food containers.
2: Ilford, taiyar ho jaiye. Wednesday 15th July, shaam 5 baje aaiye Bikaner wala Ilford aur paaiye Laika Radio ke presenter se milne ka khaas mauka. Saath hi taste kijiye India ke famous chole bature, crispy raj kachori, delicious mithai aur bahut kuch. Bikaner wala 513-519 Cranbrook Road, Gentsill, Ilford, IG2-6HA.
3: Bikaner wala parampara bhi swaad bhi.
2: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद.
4: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार.
5: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी.
4: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह.
6: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स.
7: क्रिएट टेरर

0: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: भाइयों बहनों खुशखबरी 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में इंडिया फेमस छोले भटूरे अब मैच मेड इन हेवन फैमिली को लाओ फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड गैंडसू इल्फर्ड IG2 6HA बीकानेर वाला नाउ इन इल्फर्ड
3: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
4: एट ब्रेस्ट कैंसर नाउ वी नो चेकिंग योर ब्रेस्ट कैन फील डोंटिंग बट इट्स अ सिंपल एज TLC टच लुक चेक टच योर ब्रेस्ट्स Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
2: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
1: सच?
2: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयां और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
3: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फर्ड।
4: Dreaming of paradise?
5: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
6: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
5: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923-883-100. That's 01923-883-100.
6: At all protected.
7: The Janan and J-Dot summer sale is now on with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including London, or summer sale is now on with up to 70% off stunning

0: जिंदगी वहां सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Attention London, the K Furniture flash sale is now on. Enjoy huge discounts on leather and fabric sofas, mattresses, wardrobes and divan sets, with every divan set including a free headboard plus lighting, wall art and mirrors are now less than half price. Immediate delivery available, but hurry, the flash sale ends Monday at 6 p.m. Visit K Furniture in Harrow, Cricklewood or Slough, or shop online at kfurniture.co.uk. K Furniture, where your dream home comes to life.
4: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
5: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
6: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
5: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
7: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
6: Create terror.
5: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
6: एक सिंह दा पुत्तर दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार लई लड़ूंगा भी।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। India's famous छोले भटूरे, a match made in heaven. Family को लाओ, flavors of India का मजा लो। मिले 513-519 Cranbrook Road, Gansu, Ilford, IG2-6HA. बीकानेर वाला, now in Ilford.
11: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627। अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल Noor, taste the difference.
12: Come on, England. Roar it, score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. A Leica Radio Classic

0: messages coming in for this one saying, Radio Wally, ye gaana kahan se apne nikala? It is, of course, 1992, the film Jeena Marna Tere Sang with Anuradha Padwal ki awaaz. Kala Doria. Praveen saying, Radio Wally, I think it's going to be France to win, but 3-3. So do you mean it's going to go into penalties then? 3-3, it's not a win, it's a draw. Let me know your predictions.
1: Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu, and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Like a radio.
1: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: आपके सामने एक रेड बटन है,
7: दबाया
6: नहीं, दबाना
8: था। द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
9: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
8: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
10: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
8: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
11: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।
12: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
13: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
14: इल्फर्ड तैयार हो जाइए। वेंसडे 15th जुलाई शाम 5 बजे आइए बीकानेर वाला इल्फर्ड और पाइए लाइका रेडियो के प्रेजेंटर से मिलने का खास मौका। साथ ही टेस्ट कीजिए इंडिया के फेमस छोले भटूरे, क्रिस्पी राज कचोरी, डिलीशियस मिठाई और बहुत कुछ। बीकानेर वाला 513519 क्रैनबुक रोड, गेंटसिल, इल्फर्ड, IG2 6HA।
15: बीकानेर वाला परंपरा भी।
14: बीकानेर वाला 1905 से वही असली स्वाद।
16: New feels good.
17: हाँ नया है.
16: New feels good.
18: Fly on Air India's new fleet to India and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.
1: The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

पहला नशा पहला खुमार कर लूं मैं क्या पहला नशा पहला खुमार पलक मचाल की आवाज के साथ सच ब्यूटीफुल वर्जन

0: हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
2: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
3: एक सिंह दा पुत्ता दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार लई लड़ूंगा भी।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: जन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
9: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: आपके सामने एक रेड बटन है
1: दबा दिया
0: नहीं दबाना था
2: द मैडनेस इज बैक धमाल 4 Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4, directed by Indra Kumar. Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
4: The biggest Asian love songs in the capital.
5: Laika Radio.
4: The love sound.